0: मेले थालोरो हुए मुक्ति अपमाति
1: तेरे मुक्ति अपमाति की कभी वो यें कोई दिनों की रम बाले आके मरंग देवी बानवाति लाकुन तिंजों आखिरत नवाबु नेंगोलो कांगो सरों कावे पाती नों दोसेनो तीके दोंगोनो तीकुंचे नोनो वोंग यें तिति मांसाने मati ora bakal buruk arepo ditamani pusaka landhep yen durung telas tulis sing urip ora mati wis yo tamakno wedi saka ngarep saka mburi.